0: கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது.
1: மதை திறந்து பையோகிபியன் நக்ஷத்ர ஃப்ரம் த ஆல்பம் வல்லவன். On today's episode, we were talking about the Hindi rap and hip-hop culture in India and listening to some songs. So in the history of Indian hip-hop, the another milestone is when director Soya Akhtar got impressed and fascinated by the story of hip-hop artist Nasir after listening to his song Afat and Meri Gali Mein. She wanted to portray the story of both these young rappers and consequently approached Divine and Nasir, leading to the Bollywood film Gully Boy. Let's listen to a song from Gully Boy. Song name is Mere Gully Mein.
2: Mic check, bole. क्या बोल रहे ले गली बॉय,
3: क्या बोल रहे एमसी शेर?
2: अरे अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए,
3: करते ना आबा पटेल लोग के लिए भाई,
2: अपने पाशा लोग के लिए।
3: ओ एक नंबर,
2: तुम किधर हो तुम अभी?
3: बॉम्बे 17 में बा, तुम किधर हो?

सालों से कमिंग सून है, पर तू हिम्मत ना हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल, मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया न कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर।